सुना था यहाँ आदमी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक लाने में निकाल देता है, पर ढाई घंटे में मेरी किस्मत ऐसे स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पर आ जाएगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सजा मजा बन जाएगी, ये भी कभी सोचा नहीं था। लास्ट लोकल क्या छूटी, साला किस्मत पटरी पर आ गई।

0: कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सही कहते हैं।
1: The beat of Bollywood. If you've ever set a ringtone to Kya Mujhe Pyar Hai, you're in the right place. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: Yes, good evening everybody. It is episode number 1 of The Big Binge with me, Sid. ये वो शो है जो आपका वीकेंड पर बहुत सारा टाइम एंड एफर्ट एंड स्क्रोलिंग सब कुछ सेव करने वाला है. वीकेंड बड़ी मुश्किल से आता है, उसमें टाइम को बचाओ. डू नॉट वेस्ट टाइम एंड दिस इज वॉट दिस शो इज गोइंग टू एग्जैक्टली अचीव. हाउ बताता हूँ कुछ देर में. गुड इवनिंग, वेलकम टू द बिग बिंज विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

और कुछ स्क्रैप्स, MSN चैट्स एंड बॉलीवुड बैंगर्स. इट्स योर ऑडियो टाइम मशीन. दिस इज द बिग मिलेनियल वीकेंडर, ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ द बिग बिंज। कहने का वीकेंड बहुत ही मुश्किल से आता है, 5 दिन आप मेहनत करो काम पे, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 दिन मिलते हैं वीकेंड के, उसको भी इस टाइम को भी कंफ्यूजन में, इनडिसिजन में, ताकि आप वेस्ट ना कर दें। इसीलिए आपकी खदमत में आ गया हूं मैं, यानी कि सिर्फ ऑल द वे टिल 9 o'clock, 7 to 9 ऑन अ सैटरडे इवनिंग एंड देन रिपीट ऑन संडे मॉर्निंग फ्रॉम 10 AM टू 12 PM। दिस इज द बिग बिंज। सो वी टेक एटलीस्ट 1 content piece फ्रॉम OTT, इट कुड बी अ फिल्म, कुड बी अ सीरीज दैट एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, एंड देन वी डिसाइड टुगेदर वेदर यू शुड स्ट्रीम इट और स्किप इट। ए क्लियर वर्डिक्ट टुवर्ड्स द एंड आपको मिलेगा इस शो में, द बिग बिंज पे। सो कीप इट लॉक टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। गुड इवनिंग।
1: स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट वॉचिंग। Sid's got your weekend entertainment sorted on the Big Binge. Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
1: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

वेलकम टू एपिसोड नंबर 1 ऑफ द बिग बिंज। क्या नहीं, वीकेंड बहुत ही मुश्किल से आता है। 5 दिन आप मेहनत करो काम पे, उसके बाद बड़ी मुश्किल से 2 दिन मिलते हैं वीकेंड के, उसको भी इस टाइम को भी कंफ्यूजन में, इनडिसिशन में, ताकि आप वेस्ट ना कर दें। इसीलिए आपकी खदमत में आ गया हूं मैं, यानी कि सिर ऑल द वे टिल 9 o'clock, 7 to 9 ऑन अ सैटरडे इवनिंग एंड देन रिपीट ऑन संडे मॉर्निंग फ्रॉम 10 AM to 12 PM। दिस इज द बिग बिंज। सो वी टेक एटलीस्ट 1 कॉन्टेंट पीस फ्रॉम OTT, इट कुड बी a film, could be a series that everybody is talking about, and then we decide together whether you should stream it or skip it. A clear verdict towards the end aapko milega is show mein, the Big Binge pe. So keep it locked to Big 106.2, the beat of Bollywood. Good evening.

It is episode number one of The Big Binge with me, Sid. Good evening. How are you doing on this Saturday? Hope your weekend is going absolutely according to plan. Taki aapko time waste na karna pade scrolling karne mein, indecision mein. That is why I'm here. And the show that we're talking about today to kickstart The Big Binge is Pritam and Pedro. Just like it is my debut on the show, it is Rajkumar. This show is Rajkumar Hirani's debut on digital. Right, Pritam and Pedro is that very easy to watch kind of a show, just like Raju Hirani's film. So here are some points, some positives about the show, some good things about the show, which you might consider while thinking of streaming this show, right? So, sabse pehli cheez, it is about cybercrime, lekin ye cybercrime ki dunya ko zyada heavy ya over technical nahi karta hai. For example, you watch a show like Mr. Robot, Rami Malik ka wo jo show hai, aapko yaad hoga, it's quite heavy. You have to do some research ki yaar actually aisa hota hai ki nahi hota hai. So if you're not into that kind of stuff, if you're not into heavy complicated stuff, then this is that show that keeps the tone very light, warm, accessible. Arshad Wazsi, jaisa ki aap expect kar rahe hain, is effortless. He can't help but be effortless, especially in his comic timing. And cop energy jo unki hai, it's very very very very good. And Veer Hirani, जो कि राजू हिरानी के बेटे हैं, इट्स अ सॉलिड डेब्यू स्पेस. एंड स्पेशली उनकी जो केमिस्ट्री है विद अर्शद वारसी, फॉर अ न्यू कमर, फॉर समबडी हु इज डूइंग हिज फर्स्ट पीस, इट इज क्वाइट नोटेबल, इट्स क्वाइट गुड. एंड द शो ऑल्सो हैज अ नाइस फील गुड रिदम, अच्छा ह्यूमर है, इमोशन है, फैमिली फ्रेंडली वाइब है. दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज, राइट? यू कैन वॉच दिस शो विद योर फैमिली एंड इट्स नॉट ट्राइंग टू बी समथिंग दैट इज नॉट डार्क एंड ग्रिटी. एज सून एज एक पुलिस शो का नाम आता है, यू नो, जबरदस्ती का डार्क एंड ग्रिटी होने की कोशिश करते हैं शोज, विच दिस शो डेफिनेटली डज नॉट डू, एंड दैट इज अ डेफिनेट प्लस. इट एक्चुअली वर्क्स इन इट्स फेवर. कमिंग अप नेक्स्ट, सम नेगेटिव्स अबाउट दिस शो, सम थिंग्स दैट एक्चुअली डोंट वर्क इन द शोज फेवर. कीप इट लॉक, दिस इज द बिग बिंज विद मी सिड ऑन दिस सैटरडे इवनिंग. आप सुन रहे हैं बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड.

0: फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.
3: Yes, this is episode number one of The Big Binge, वो शो जो आपका काफी टाइम सेव करता है ओवर द वीकेंड. दैट्स व्हाट द इंटेंशन इज. आज हम बात कर रहे हैं अबाउट प्रीतम एंड पेड्रो. आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द गुड एस्पेक्ट्स ऑफ द शो, व्हाई यू माइट कंसीडर स्ट्रीमिंग इट. कमिंग अप अ फ्यू ऑफ द नेगेटिव्स अकॉर्डिंग टू मी, इट्स प्योरली सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. एंड देन फाइनली द वर्डिक्ट, स्क्रीम इट और नहीं सॉरी स्क्रीम बोलिए स्ट्रीम इट और स्किप इट, ताकि आपका काफी टाइम बच जाए ओवर दिस वीकेंड. जनहित में जारी ये शो, इट्स कॉल्ड द बिग बिंज विद मी सिड राइट हियर ऑन बिग 106.2 The Beat of Bollywood. Good evening.

It is now verdict time on The Big Binge, episode number 1 of The Big Binge. And today we are talking about Pritam and Pedro. Gyan to bahut ho gaya, achhi cheeze hain, buri cheeze hain. Lekin ye batao ki stream karein ki skip karein. That's its verdict time on The Big Binge for Raju Hirani's OTT digital debut. Dekhein ki nahin dekhein. Now here's what I'd like to say finally. Now I'd say stream it, definitely, but with the right expectations. अगर आप सोच रहे हैं कि ये डार्क साइबर क्राइम देखेंगे, मास्टरपीस विद माइंड ब्लोइंग थ्रिलर, देन आपको होगी डिसअपॉइंटमेंट. गो इन फॉर अर्शद वारसी. अर्शद वारसी इज अमेजिंग. इफ यू आर एन अर्शद वारसी फैन, दिस इज अनमिसेबल. लाइट बडी कॉप मूड में अगर आप हैं, सम क्लीन ह्यूमर, इफ यू लाइक अ फील गुड राजकुमार हिरानी फ्लेवर का शो, देन यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. इट्स द काइंड ऑफ शो दैट यू कैन वॉच विद फैमिली, वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट नीडिंग अ हेडेक टैबलेट आफ्टर एवरी एपिसोड. स्ट्रीम इट अगर आपको चाहिए कुछ ब्रीजी, कुछ अनकॉम्प्लिकेटेड, एंड स्किप इट अगर पुलिस का नाम सुनते ही आपको चाहिए एक डार्क थ्रिलर, शार्प, फुल ऑफ बिग ट्विस्ट्स. अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन यू विल डेफिनेटली बी डिसअपॉइंटेड. सो दैट्स माय वर्डिक्ट ऑन प्रीतम एंड पेड्रो, राजकुमार हिरानीज़ OTT डिजिटल.

0: अगेन प्रीतम का म्यूजिक एंड साथ में अमिताभ भट्टाचार्य. मूविंग ऑन टू गाना नंबर 30 इस हफ्ते. वी आर सेलिब्रेटिंग सुखविंदर सिंह की आवाज. फ्रॉम विशाल भरद्वाज की ओ रोमियो. एंड दिस इज नॉट योर टिपिकल लव स्टोरी. इट इज बेस्ड ऑन अ गैंगस्टर सागा. इनफैक्ट हुसैन जैदी की फेमस नॉन फिक्शन बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई पे बेस्ड है लूजली ये मूवी. एंड ब्रिलियंट म्यूजिक एंड ऑफकोर्स शाहिद कपूर, तृप्ति दिमरी, वेरी वेरी पावरफुल रोल्स. म्यूजिकली ऑल्सो दिस मूवी ऑफकोर्स विशाल भरद्वाज की है, तो बहुत कमाल है. गुलजार साहब के लिरिक्स हैं एंड एक्सप्लोजिव वोकल्स ऑफ सुखविंदर सिंह विद रेखा भरद्वाज. इस हफ्ते हमारा गाना नंबर 30 राइट हियर. दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड. द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2, the beat of Bollywood. Number 31.

0: Like I said, the top 40 biggest hits of the week mein at least 10 gaane Dhurandhar ke honge. It is one of the biggest movies of last year and of course part 2 is so far the biggest movie of 2026. Playing you the top 40 biggest hits of the week. This is the Big Bollywood Countdown right here on Big 106.2. Keeping you company, I'm Mansi. That was Ishq Jalakar Dhurandhar Se on 21. Now, moving on, gana number 20. We are moving on to this movie that I so wanted to see in the theatre, but मूरत ही नहीं निकल पाया. मैं वापस आऊंगा. ग्रेट रिव्यूज इम्तियाज अली की मूवी है, साथ में वेदांग रैना, शर्वरी, बट पीपल आर प्रेजिंग दिलजीत दोसांझ एंड ऑफकोर्स नसीर साहब अ पार्ट ऑफ दिस मूवी. यू कांट गो रॉन्ग विद दिस कास्ट. इनफैक्ट आई वॉज जस्ट वॉचिंग अ पॉडकास्ट जिसमें इम्तियाज बता रहे थे कि ये गाना कैसे कॉम्पोज हुआ. इरशाद वॉज राइटिंग बट ही कुडंट थिंक ऑफ एनी थिंग एंड यू नो ए आर रहमान जब अपनी जोन में होते हैं तो दोनों डिस्कस कर रहे थे. दे वर ब्रेन स्ट्रॉमिंग एंड ही सेड मस्कारा एंड सडनली यू नो किसमिस यारा मस्कारा स्टार्टेड राइमिंग एंड देन इम्तियाज गूगल्ड के उस जमाने में बैक इन 1930s and 40s क्या मस्कारा मिलता था, अवेलेबल था, एंड ही फाउंड आउट यस मस्कारा वाज स्टिल रेलेवेंट बैक देन एंड दैट्स हाउ ये गाना बना. व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक. इस हफ्ते ऑन नंबर 20 वी've got दिस वन फ्रॉम मैं वापस आऊंगा.
1: किस में सियारा लाई मस्कारा अखियां लगाई रखना. किस में सियारा लाई मस्कारा लगिया नि
0: निहारिका घोष ऑन द वोकल्स ऑफ दिस वन ऑन नंबर 20. मूविंग ऑन टू नंबर 90 अगेन वी हैव गॉट अ ट्रैक फ्रॉम धुरंधर 2.

0: शाश्वत सचदेव, साथ में ज्योति नूरा, जैस्मिन सैंडलेस एंड रेबेल. यू कांट गो रॉन्ग विद दिस ट्रैक. सडनली यू नो ग्लूकॉन डी है ये बॉडी के लिए, इतनी एनर्जी आ जाती है. इस हफ्ते ऑन नंबर 19 प्लेइंग इन द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. स्टे राइट हियर, दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. आई एम मानसी.
1: This is the Big Bollywood Countdown.
2: All the music I love.
1: The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. What if this summer came with a surprise? A big surprise. This summer, Big 106.2 is giving you the ultimate staycay. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Win a family staycation where you can relax by the pool, enjoy the breeze and treat your family to a well-deserved break. Big Summer Surprises. Presenting sponsor, Skechers. Title sponsor, Papa John's. Hospitality partner, Rixos, Al Mayrid, Ras Al Khaimah. Only on Big 106.2, a part of Fun Asia's global media network. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

0: तलक।
1: अरिजीत सिंह की आवाज साथ में मधुबंती बागची, राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड, प्लेइंग यू द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक। यू हैव बिग बॉलीवुड काउंटडाउन,
2: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
3: This football season, enjoy every single match live at the Huddle Bar Dubai. The Huddle Al Barsha and Brewhouse, the official fan zones of the World Cup. Expect special World Cup menus and happy hour deals with select beverages from 24 dirhams. If that doesn't make you scream,
4: goal!
3: They're broadcasting games past 3 a.m. For more information, follow at the Huddle UAE and at Brewhouse DXB on Instagram. Terms and conditions apply.
2: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 9.

0: you're a fan of comedy, the boys are back and the confusion is bigger than ever. Indra Kumar ki Dhamaal 4 is staying loyal to its franchisee's roots. Absolute comedic madness. Bahut hi kamal movie hai. If you go to the theater just for a light-hearted fun movie, Dhamaal 4 it is. And Dhamaal gaane bhi hain. Ritesh Deshmukh, Arshad Varsi, Javed Jafri, Ashish Chaudhary officially back together. 2007 mein the pehla version of the movie aaya tha and it became a cult. So yeah, Dhamaal 4 se ye gaana is hafte on number 4.
1: गुलाबी साड़ी आणि लाली लाल लाल दिसते मी भारी राजा फोटो मजा कर.
0: सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कुछ साल पहले ये गाना, धमाल फोर ने उठा लिया है और धमाल कर रहा है ये गाना इस हफ्ते नंबर 4 पे. राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग यू द टॉप 40 बिगेस्ट हिट्स ऑफ द वीक. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. मैं हूं मानसी.
2: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन. ऑल द म्यूजिक आई लव. द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. Big 106.2. The beat of Bollywood.
3: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

This is the Big Bollywood Countdown. Mansi on number 3. Varun Dhawan, Anu Malik and Javed Mohsin. Well, beautifully recreated iconic gana hai. Biwi number 1 se Sushmita Sen and Salman Khan. And bahut hi kamal recreate kiya ye gana. In fact, I loved the movie, by the way. You know, hum itna dimag lagate hain when we go and watch movies. Movies are for entertainment and this movie thoroughly entertains you. Now, moving on to gana number 2. Is hafte gana number 2. It is a very, very tough call. It is a song from Dhurandhar 2. And of course, jab Aditya Dhar ne drop kiya tha trailer, Dhurandhar 2 ka, the internet went completely berserk because Ranveer Singh, of course, looked incredible. But what everyone was actually talking about was the background track. Music composer Shashwat Sachdev ne seriously 90s and 2000s walo ko ekdam रीलिव करने को मजबूर कर दिया द मेमोरीज दैट वी हैड ऑफ दिस बैंड कॉल्ड बॉम्बे रॉकर्स इफ यू रिमेंबर अर्ली 2000s द डैनिश इंडियन ड्यू नवतेज सिंह एंड थॉमस कंप्लीटली रूल्ड द चार्ट्स विद दिस सॉन्ग विच वॉज ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल पंजाबी फोक जिसे हम बारी बरसी कहते हैं बोलियां भी कहते हैं एंड धुरंधर 2 ने सिर्फ रीमिक्स नहीं किया इस गाने को ओरिजिनल सिंगर नवतेज ने यह गाना गाया है एंड ऑफकोर्स लेयर्ड विद द पावरफुल वोकल्स ऑफ जैस्मिन सैंडलर्स एंड खान साहब एंड इट इज अ ब्यूटिफुल रीमेक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एब्सोल्यूट नॉस्टैल्जिया and modern energy. So is hafte on number 2 we've got this one from Dhurandhar 2. Up now keep guessing gana number 1 kaun sa is hafte. I'll give you a hint again, a brilliant song from a new movie and a OG track while I play you gana number 2 right here on Big 106.2 the beat of Bollywood. Number

0: Countdown.
1: इस हफ्ते के 40 सबसे धमाकेदार हिट
2: Countdown.
3: Here we go.
1: सिर्फ Big 106.2 Beat of Bollywood पर.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Zora, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: हाँ जी बिल्कुल सही, दिस इज द बिग रेकमेंड्स, ब्रांड न्यू शो फॉर यू एवरी संडे 3 to 6 PM। मैं आपके लिए लेकर आऊंगी यहाँ पे सबसे बढ़िया रेकमेंडेशंस। देखो दुबई की पली बड़ी बच्ची हूँ, सो ऑब्वियसली यहाँ का इन एंड आउट मुझे पता है। इफ यू रिलेटिवली न्यू हियर या फिर न्यू नहीं भी हो, मतलब बस बहुत टाइम से हो लेकिन सही जगह आपको मतलब अभी तक डिस्कवर करने का चांस नहीं मिला, एक्सप्लोर करने का चांस नहीं मिला, ये मैं अपनी तरफ से जो पर्सनल रेकमेंडेशंस आपको दूंगी, यू विल डेफिनेटली बी इंस्पायर्ड टू गो चेक आउट दोज प्लेसेस। देखो इफ यू डोंट नो यू नो मी वेरी वेल येट एटलीस्ट, तो इस शो पे आपको मेरे लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहला शो है, आई डेफिनेटली हैव टू स्टार्ट विथ माई मोस्ट फेवरेट थिंग इन द होल वर्ल्ड विच इज चाय। चाय के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, द बेस्ट प्लेसेज वे यू कैन हैव द बेस्ट चाय इन द UAE, माई पर्सन रिकमेंड, मेरा थप्पा जो लगा हुआ है इस पे, लेट्स गेट इनटू दैट राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून, जोहरा के साथ हो आप राइट हियर ऑन बिग 106.2. दिस इज द बीट ऑफ बॉलीवुड ऑन द बिग रेकमेंड्स द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द शो. आज हम बात कर रहे हैं चाय की, बिकॉज इफ यू नो मी देन यू नो कि चाय इज समथिंग दैट आई हैव बीन ऑब्सेस्ड विद सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम, सिंस द टाइम आई वॉज बॉर्न. आई थिंक मुझे दूध से पहले सिर्फ चाय पिला दी थी मम्मी ने, बट या बेसिकली चाय इज एवरीथिंग टू मी. एंड सिंस आई हैव बीन बॉर्न एंड रेज्ड ओवर हियर, मैंने यू नो आई मेड श्योर कि यहाँ के सारे चाय स्पॉट्स जो है मैंने एक्सप्लोर किए हैं, डिस्कवर किए हैं, मैंने वहाँ की वहाँ चाय मतलब ट्राई की है. सो आई थिंक आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल यू कि मुझे कहाँ की चाय सबसे ज़्यादा पसंद आई है. ना सबसे पहले बिफोर वी गेट इन टू दैट, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाय, है ना, वो पहला डिबेट है जो हमें सॉर्ट करना होगा, बिकॉज बहुत टाइप की चाय बनती है. नाउ मी अनपॉपुलर ओपिनियन होगा ये, एंड आई थिंक आई माइट गेट अ लॉट ऑफ स्लैक फॉर दिस, बट मुझे बाहर की ना फ्रेश चाय नहीं पसंद, मुझे मेरी डिप डिप वाली चाय पसंद आती है. दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, बट आई जस्ट फील लाइक नॉट एवरीवन कैन मेक अ गुड कप ऑफ फ्रेश चाय आउटसाइड. फ्रेश चाय मैं घर की पी लूँ, लोगों के हाथ की बनी पी लूँ, लेकिन बाहर मैं फ्रेश चाय ना पीऊँ. बाहर अगर जाऊँ तो मैं डिप डिप वाली चाय पीऊँगी. तो सबसे पहला तो मेरा ये डिबेट आपसे है कि आर यू समवन हु प्रिफर्स द फ्रेश चाय, फ्रेश मिल्क वाली चाय आपको पसंद आती है, या फिर आर यू समवन जो यू नो ऑन द गो रुक गए एक फटाफट से डिप डिप वाली चाय उठा दी. बिकॉज आई एम डेफिनेटली टीम टू. विच टीम आर यू मुझे बताओ. यू कैन मैसेज अस ऑन आवर व्हाट्सएप 0543091062, और यू कैन इवन डीएम अस 106.2 एफएम पे, ड्रॉप योर प्रेफरेंसेस ओवर देयर, एंड उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि यहाँ पे दुबई में, यूएई में फ्रेश चाय और डिप डिप वाली चाय बेस्ट आपको कहाँ पर मिलती है.

0: जी, गुड आफ्टरनून. दिस इज द बिग रेकमेंड्स विद मी ज़ोहरा, राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. आज है पहला दिन इस ब्रांड न्यू शो का, अ शो वेयर आई टॉक अबाउट ऑल द बेस्ट प्लेसेस दैट यू कैन गो चेक आउट इन एंड अराउंड द यूएई. बिकॉज यार, मैं यहाँ की पली बड़ी बच्ची हूँ एंड आई नो एवरीथिंग इन एंड आउट यहाँ पे. बट सिंस इट्स डे वन ऑफ द शो, आई हैव गॉट टू टॉक अबाउट माय वेरी मोस्ट फेवरेट थिंग विच इज चाय. हम बात कर रहे हैं चाय की, बेस्ट प्लेसेस टू हैव चाय एट ओवर हियर. नाउ पहला मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि चाय भी अलग अलग टाइप की होती है. कुछ लोगों को काली चाय पसंद है, कुछ लोगों को फ्रेश मिल्क चाय, कुछ लोगों को डिप डिप वाली चाय, बहुत अलग अलग होती है. नाउ फॉर मी, आई थिंक आई एम टीम चाय डिप डिप. मुझे फ्रेश मिल्क वाली चाय बाहर की नहीं पसंद आती है. एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस पोरिंग इन एंड लॉट्स ऑफ पीपल सेइंग कि यार नहीं, फ्रेश मिल्क वाली चाय का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कैसे कंपेयर कर दिया. आई नो, आई न्यू आई वुड अफेंड अ लॉट ऑफ पीपल, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट इट्स माय प्रेफरेंस यार. मुझे नहीं पसंद आती बाहर की. घर की आप बनाओ, मुझे बुला लो, मैं पी लूंगी, बड़े शौक से पीऊंगी, लेकिन बाहर की फ्रेश मिल्क चाय इज अ नो फॉर मी. सो डिप डिप चाय की मैं बात करना चाहती हूँ. येस, अ लॉट ऑफ मैसेजेस कमिंग इन फॉर दैट एज वेल कि हाँ यार, सबसे ईजी है और सबसे मतलब लाइट भी है. इट्स ईजी टू यू नो हैव ऑन द गो. एंड यू नो, वो पानी कम वाला एक ऑप्शन होता है. पानी कम बोलो तो अब वो आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा आपको देते हैं. एंड दैट्स जस्ट सो क्विक, यू नो, वो मैं मतलब 4-5 कप पी जाऊं इन यू नो एट अ स्ट्रेच. सो एनीवे, डिप डिप चाय की अगर बात करो तो मतलब बहुत सारी जगहों पे मिलती है, बट अगर सबसे बेस्ट की बात करनी है तो आई थिंक आई वुड हैव टू से कराची दरबार. आप कभी गए हो कराची दरबार? ऑफकोर्स वहां का खाना तो बढ़िया है ही, वहां के सीख कबाब वगैरह खा लो आप, इट्स incredibly tasty, but the chai over there is for me the best part. I don't think maine pure UAE mein kahin pe bhi usse better chai pi hai, considering the kind of chai that I like, the taste that I like. It's the perfect amount of sweetness, it's the perfect color. Main na chai ka color dekh ke bahut judge karti hu, ye I think har koi chai lover karta hoga. Chai zyada dark ho gayi to matlab bahut strong hone wali, kadvi hone wali, zyada light ho gayi matlab chai hai hi nahi hai to aapne sirf doodh ubal kar de diya hai. Wo ekdam perfect jo brown color aata hai na, golden brown jisko kehte hain, wo chai ka कलर होना चाहिए. एंड कराची दरबार में चाय उसी कलर की मिलती है. इट इज अ 10/10 फॉर मी. सो आई थिंक द बेस्ट चाय दैट यू वुड गेट वो वाली विच इज द रेनबो मिल्क वाली, नॉट द फ्रेश मिल्क वाली चाय. दैट आई थिंक द बेस्ट यू विल गेट एट कराची दरबार. लेट मी नो इफ यू हैड दैट. नहीं अगर आपने ट्राई किया, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली बी मेकिंग अ स्टॉप टुडे एंड ट्राइंग दैट चाय, जस्ट दैट चाय. आज खाने के लिए वहां पर मत जाना, बट डेफिनेटली गो टू कराची दरबार टू हैव देयर चाय.
1: ओह यस.

दिलेर मेहंदी की आवाज यार, जोर का झटका, हाय जोरों से लगा. लव द सॉन्ग, लव द फील एंड एब्सोल्युटली लव द मूड दैट वी आर यू नो सेटिंग हियर टुडे बिकॉज इट्स अ संडे आफ्टरनून. इट इज द फर्स्ट डे ऑफ दिस ब्रांड न्यू शो द बिग रेकमेंड्स, जहां पे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ यूएई में मतलब क्या कर सकते हो, कहाँ जा सकते हो, व्हाट टू एक्सप्लोर, व्हाट टू ट्राई आउट. आई मेक श्योर दैट आई ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेकमेंड्स. आज हम बात कर रहे हैं चाय की, बिकॉज इट इज समथिंग आई थ्राइव ऑन. चाय इज लाइफ फॉर मी. मेरे लिए चाय is not just a thing that you drink. It's not just a drink, it's a way of life for me. And preferences chai mein sabki alag alag hoti hain. Kuch logon ko kali chai, kuch logon ko let's say doodh wali chai, kuch logon ko fresh milk ki chai. I was talking about the best places where you can get the dip dip wali chai, which is the rainbow wali chai jo usually log peete hain, jo mujhe bahut pasand hai. It's quick, it's easy, it's on the go, it's something jiske liye wait nahi karna padta. Fresh milk mein time bhi lag jata hai, usko aise banana padta hai and all of that. I just feel like nahi hai Dubai mein to kisi ke paas wo type ka time नहीं है. बट anyway, अगर आपको भी ऐसी डिपडिप वाली चाय पसंद है तो एक तो मैंने रेकमेंड किया कि आप जाओ कराची दरबार, विच इज अमेजिंग. वहां की चाय इज 10/10 फॉर मी. मैंने वहां से बेटर चाय कहीं नहीं पी है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको अच्छी चाय चाहिए देन आई वुड रेकमेंड देयर इज अ स्मॉल कैफेटेरिया कॉल्ड शाय, SHAY. इसके बहुत सारे मतलब versions अवेलेबल है. मेनी मेनी पीपल हु हैव टेकन अप द नेम शाय, वक्तल शाय, दानत शाय, कुकल शाय, बट एनी प्लेस दैट हैज शाय इन इट, यू नो दैट दे विल हैव द बेस्ट चाय. दिस मच आई कैन गारंटी. नॉट एनी अदर कैफेटेरिया, बट एनी कैफेटेरिया विद शाय इन इट, दे विल सर्व यू द बेस्ट डिप डिप चाय. ये मैं आपको बोल सकती हूँ. फ्रेश मिल्क वहाँ की नहीं पीना, कैफेटेरिया की फ्रेश मिल्क चाय नहीं पीते होते, लेकिन डिप डिप वाली चाय वहाँ की बेस्ट होती ही होती है. स्पेशली अगर आप दुबई में पले बड़े हो, अगर चलो let's say not even born here but if you've been here a while now, I think that is something jo ek adda ban gaya hai. Regardless of your age, you could be Gen Z, you could be millennial, you could be a boomer, you could be anything, but you will see everyone at any of these chai cafeterias kyunki wahan pe best chai milti hai. If you agree, let me know on our DM which is 106.2 Big FM. Yahan pe I'm talking about where in the UAE can you get the best chai. Agle ghante main baat karungi fresh milk chai ki, because I know a lot of you are fresh milk chai lovers, and yes, I will share my recommendations on that as well.

0: जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ।
1: From hidden cafes to viral hotspots, we have got your weekend sorted. The Big Recommends with Zara, only on Big 106.2, the beat of Bollywood.
2: हां जी, गुड आफ्टरनून, ज़ोहरा के साथ हूं ऑन द बिग रेकमेंड्स, ब्रांड न्यू शो आपके साथ होने वाली हूं हर संडे फ्रॉम 3 to 6 PM, ब्रिंगिंग यू ऑल द बेस्ट रेकमेंडेशंस। यार कहां पे जा सकते हो, क्या खा सकते हो, क्या पहन सकते हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर गुड रेकमेंडेशंस, द टॉप टियर रेकमेंडेशंस, आई ब्रिंग यू ऑल ऑफ दोस। सिंस इट्स द फर्स्ट डे ऑफ दिस ब्रांड न्यू शो, मैं बात कर रही हूं अबाउट समथिंग दैट आई एम वेरी मच इन लव विद, दैट इज चाय। द बेस्ट प्लेसेस टू गो हैव द बेस्ट चाय इन टाउन, ये कहां पे जा सकते हो, कहां पे मिल सकती है, ये सारा कुछ टू फॉलो। Stick around with me. My name is Zohra with you until 6 PM.

love, love, love this remix here. Disco 82 apne suna right here on The Big Recommends with me, Zohra, keeping you company right here on Big 106.2. This is the beat of Bollywood. Filhal, aaj pehle din pehle show pe hum baat kar rahe hain chai ki, the best chai in town, where you can go, what you can explore. Agar aapne chai matlab hamesha se hi pasand ki hai and you feel like, you know, you want to go to all these places jahan pe achhi chai milti ho, whether it is Dip Dip Rainbow Chai, whether it is the fresh milk wali chai, I make sure ki maine sab kuch try kiya ho aur main best recommends aap tak lekar aaun. Filhal फ्रेश मिल्क की हम बात कर रहे थे. आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि राजू ऑमलेट की चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई लव द होल पैकेजिंग ऑफ इट, द होल यू नो द वे इट इज सर्व्ड टू यू. आई थिंक इट्स अ 10/10 एक्सपीरियंस. बट उसके अलावा बेस्ट चाय की मैं अगर बात करूँ तो आई रिसेंटली, आई थिंक अबाउट 2 years अगो, एक्सप्लोर दिस प्लेस कॉल्ड चाय एंड को, एंड बहुत बहुत बढ़िया लगा यार मुझे. वहाँ का सब कुछ बढ़िया लगता है लेकिन चाय. सो यू नो वेन एवर यू नेम योर रेस्टोरेंट और योर ब्रांड बेस्ड ऑन एनी वन थिंग, जैसे चाय एंड को, इवन दो इट्स अ रेस्टोरेंट, सब कुछ खाना वाना सब कुछ मिलता है, बट अगर आपने चाय नाम में रखा है चाय एंड को, आई वुड एक्सपेक्ट द चाय टू बी like the best seller, right? Chai has to be good kyunki aapke naam mein hi chai hai. Kabhi kabhi mujhe lagta hai that wo justice nahi kar pate kafi zyada brands, but chai and co 10/10 justice serve kiya hai, because wahan ki chai is one of the best that I have had. I think it is as good as Raju omelette, if not better, or if not, you know, number 2 or whatever. I would say both of them are equal. Mere liye dono hi bahut hi badhiya chai hai, and it is also an experience. Ha, aap wahan pe jao, wo serve jis tarike se karenge, aapki chai aayegi, chota sa biscuit ya cookie kuch saath mein aayega, they'll make sure that you know you wo pura sa perfect aapke liye chai serve ho, ki aapka time bhi acha jaye, saath mein kuch khane ko bhi mil jaye, and it is just amazing. I love the chai over there, especially wahan ki fresh milk chai. Wahan pe dip dip chai nahi milti. So make sure ki agar aap chai lover ho, especially fresh milk pasand karte ho, then Chai and Co is a 100% recommendation from my end, because it is one of the best chais in town.

क्या किया अगर ज़ोरा से रिकमेंडेशन नहीं लिया, उसके रिकमेंडेशन वाली जगह पे नहीं गए और वहां की वो चीजें नहीं ट्राई की, तो मतलब क्या किया रे सनम आपने। तो दिस इज द बिग रिकमेंड्स, माय नेम इज ज़ोरा, विद यू एवरी संडे 3 से 6 के बीच सारे यूएई के बेस्ट रिकमेंडेशन आपके लिए लेकर आती हूँ। कहाँ जाना है, क्या पहनना है, क्या खाना है। इस हफ्ते हम बात कर रहे थे चाय की, द बेस्ट चाय स्पॉट्स इन टाउन, फ्रेश मिल्क चाय से लेकर डिप डिप चाय बेस्ट कहाँ पे आपको मिलेंगी, ये तो मैंने आपको बता दिया। कुछ स्पेशल मेंशंस मैं लास्ट आवर में करने वाली हूँ, विच इज इन द नेक्स्ट आवर, सो स्टिक विथ मी। माय नेम इज ज़ोरा। फिलहाल मेक श्योर टू गो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट इज 106.2 बिग एफएम ऑन सोशल मीडिया।

On the big recommends right now, हम बात कर रहे हैं about the best places to have chai in the UAE. Already बात कर चुकी हूँ fresh milk और dip dip वाली चाय अच्छी कहाँ पे मिलती है. मैंने अपने suggestions तो आपको दिए, but there are some places that I think deserve a special mention. You know, इन जगहों पे मेरा अभी उतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता, mainly because of the location and all of that. But I think they hold a special place in my heart. Now, पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ. If you've been in the UAE for long enough, you know definitely ki this place is known for their epic chai. Main baat kar rahi hu Hara Cafeteria ki. It's one of the OG chai spots. Aaj bhi school college ke bacche wahan pe aapko dikhenge parking lot mein, ya jo school college se nikal chuke hain kaam ke baad wahin pe jaate nazar aayenge aapko. Hara is known for that. Wahan pe unki ek disco chai hai jo bahut zyada popular hai. Now maine पी है, इवन दो आई एम अ बिगर फैन ऑफ द नॉर्मल सादा कड़क चाय, डिस्को की मैं उतनी फैन नहीं हूँ, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त आए हैं डिस्को चाय वहाँ पे इतनी पॉपुलर है उनकी दैट एवरीबडी फॉल्स इन लव विद इट. सो मे बी इफ यू आर समवन हु लाइक्स मसाला चाय, दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट ट्राई फॉर यू. डिस्को चाय हारा कैफेटेरिया की इज अ 10/10. उसके अलावा इफ यू आर अ फैन ऑफ यू नो काली चाय जिसको बोलते हैं सुलेमान

नीचा है. फिर फैन ऑफ दैट मोर मोर लोकल टच जिसमें है, नॉट द यूजुअल दूध वाली चाय, देन आई थिंक यू शुड डेफिनेटली ट्राई अरेबियन टी हाउस. एक तो एटमोसफियर इसका इतना ब्यूटिफुल है, इट लुक्स गॉर्जियस, तो वहाँ पर बैठ कर आप कुछ भी पानी भी पी लो तो आपको अच्छा लगेगा. बट दे आर नोन टू यू नो सर्व दे आर करक ऑल्सो, साथ ही साथ सुलेमानी चाय ऑल्सो इन अ नाइस ब्यूटिफुल सेटिंग. तो वहाँ पर वो चाय का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलता है. इवन द चाय इज ऑल्सो वेरी नाइस, बट दैट इज इफ यू लाइक अ मोर यू नो वो क्या कहते हैं द क्लासिक टच टू इट, नॉट द देसी वाली चाय. सो दीज आर अ फ्यू रिकमेंडेशंस फ्रॉम माई एंड. आई थिंक दीज आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर चाय. अगर आप मेरे सजेशंस के साथ रिकमेंडेशंस के साथ अग्री करते हो, यू कैन लेट अस नो ऑन आवर इंस्टाग्राम व्हिच इज 106.2 बिग एफएम. और इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशंस, यू फील लाइक आपने भी कहीं चाय पी और वो आपको बहुत अच्छी लगी थी, शेयर दोज ऑल्सो विद अस ऑन आर डीएम 106.2 बिग एफएम.

मोहित चौहान की आवाज यार, ऐसी आवाज है वीकेंड पे अगर आप सुन लो बस चेहरे पे एक स्माइल सी आ जाती है, स्पेशली ऑन अ संडे इवनिंग. एंड वी मेक श्योर दैट ये मूड आपका यहाँ पे बना रहे, वेदर इट्स द चिल मूड दैट यू आर इन और द पार्टी मूड दैट यू आर इन, म्यूजिक टू गो विद एवरी सिंगल मूड ऑफ योर्स यहाँ पे राइट हियर ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड. मेक श्योर टू गो फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम, दैट इज 106.2 बिग FM. वी कीप यू एंटरटेन्ड ओवर देयर 24/7. दैट्स 106.2 बिग FM ऑन इंस्टाग्राम.

Love, love, love the song. यार सुनिधि चौहान और कुमार सानू की आवाज मेरी जिंदगी में अजनबी का मुझे इंतजार है ऑन द बिग रेकमेंड्स विद दैट इट्स माई टाइम टू टेक योर लीव. मेरी आवाज मेरा अंदाज अगर आपको पसंद आया हो यू कैन गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम जोहरा अमीन इज माई हैंडल ओवर देयर. आई नाउ सी यू टुमारो आफ्टरनून 1 to 5 के बीच ऑन द बिग मिक्स. अंटिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड टू बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड.

आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Y2K hits, indie gems, Bollywood gold, your kind of playlist. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2. The

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.

Big 106.2, The Beat of Bollywood. आप सुन रहे हैं Big 106.2, The Beat of Bollywood.

0: आप सुन रहे हैं बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड।
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यही 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पाँच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। Big 106.2, the beat of Bollywood.